0: बहुत अच्छे, मगर तुम रुक क्यों जाती हो?
1: मुझे जाने दो अशोक बाबू।
0: अशोक

मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नार info@ujala.net info@ujala.net

ये उजाला रेडियो है। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम आगाज करते हैं। हर एक सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं हूँ आपका हम सफर निशा। इस प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों को एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप इत्मीनान से, सुकून के साथ प्रोग्राम सबरंग से लुत्फ उठाइए, मज़े लीजिए। ऐ खुदा मुझे नहीं मालूम कि मुझसे वाबस्ता रिश्तों और दोस्तों को क्या क्या मुश्किलात है, पर तू सब जानता है। उनकी मुश्किलों को आसान फरमा, उन्हें वो सब अता कर जिसके उन्हें ज़रूरत है, और उनको ज़िंदगी भर खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए।

था ये दुआ लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाजों में। अखिया हरी दर्शन की प्यासी सुनवाएंगे सुरीली आवाज में हेमंत शुक्ला।

सूरदास भजन आपने अभी गायिका हेमंत शुक्ला की सुरीली आवाज में सुना। मैं हैरान हूं कि मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत कब हुई। जब भी मोहब्बत लफ्ज आता है ना, जब भी मोहब्बत लफ्ज आता है तो सिर्फ तुम्हारी ही चेहरा याद आता है। हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीतूं जिगर को मैं।

शेराना अंदाज में पेश थी ये गज़ल महान शायर मिर्ज़ा गालिब का कलाम था। मौसिकार खयाम की मौसिकी और महेंद्र कपूर अपनी आवाज़ से इस गज़ल में चार चांद लगाए हैं। मोहब्बत मोहब्बत पलकों पर कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकती ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब, फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों की सारी परिंदे उड़ जाती है, सारे सपने कहीं खो गए।

दिल छू लेने वाली गजल पेश थी अलका याग्निक की आवाज में। कलाम था शायर जावेद अख्तर का, मौसिकी राजू सिंह की। इंतजार, इंतजार की आरजू अब खो गई है, खामोशियों की आदत हो गई है। ना शिकवा रहा ना शिकायत किसी से, अगर अगर है तो एक मोहब्बत इन तन्हाइयों से हो गई है। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो।

खम्मा की लाजवाब गजल पेश थी गायिका और अदाकारा सुरैया की आवाज में। कलाम था शायर मिर्जा गालिब का। मौसिकी थी मौसिकार गुलाम मोहम्मद की। प्यार प्यार दिल है दिमाग नहीं, प्यार प्यार सोच है आवाज नहीं। कोई आंखों से नहीं देख सकता प्यार के

अनमोल नगमा पेश था महेंद्र कपूर की आवाज़ में, नगमकार था एस हा बिहारी, मौसीकी थी ओपी नैयर की। अब सुनवाते हैं स्वर की मालिका लता मंगेशकर से ये नगमा।

सदाबहार नगमा पेश था शायर शकील बदायूनी का, लिखा तर्स था मौसिकी थी नौशाद अली की। लग जाए ठोकर तो पलट कर लौट आना, गोरी चलो ना हंस की चाल, जमाना दुश्मन है।

सदाबहार दो गाना पेश था मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। दुख हो, दर्द हो, साज हो या बीते दिनों की आवाज हो, मैं जो कुछ भी हूँ, तुम भी उदास हूँ।

कम्मा का नगमा पेश था मुकेश की शहद भरी आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसिकी थी और दिल की कलम से दर्श को लिखे थे शायर राजा मेहदी अली खान। मोहम्मद रफी क्या सुनाने को जा रहे हैं अपनी मधुर आवाज में, लीजिए पेश है।

फिल्म कन्यादान में से ये नगमा पेश था। नगमकार था शायर नीरज, मौसीकी से सवारे थे शंकर जयकिशन। उमंग भरा गीत आइए सुने, जी हाँ, गीता दत्त की आवाज में।

आप सभी सुनने वालों को फिल्मी दुनिया में एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। कई प्रोग्रामों में हमने महान मारूफ शख्स धर्मेंद्र के बारे में बयान किया है। हमने कोशिश किया है छोटी रूप में धर्म जी की फिल्मी सफर के बारे में बयान करने को, कैसे थी उनके पर्दे के पीछे की जिंदगी, उस पे हमने जरा सा रोशनी डाला है तो एहसास हुआ कि धर्म जी की निजी जिंदगी हम सब से अलग नहीं था। पिछले प्रोग्राम में बतलाई थी कि धर्मेंद्र शोहरत की बुलंदियों पर था, लेकिन साथ ही साथ अपने बीवी प्रकाश के साथ बच्चों को जो सभ्यता, संस्कार, तालीम व तरबियत दिए है, पले बड़े हैं, आज भी बरकरार है। धर्म जी की पहली बीवी बच्चों के बारे में इतला तो किया, पर धर्मेंद्र का दूसरा दयाल खानदान भी है और धर्म ने ये फखर से कहा था। पर कब और कैसे धर्म जी की पहली मुलाकात हुई थी अपनी दूसरी बीवी से, पहले एक गीत सुनवाते हैं, फिर बातें आगे बढ़ाएंगे।

पहली नजर में हमने अपना दिल दिया था तुमको। फिल्म द बर्निंग ट्रेन का गीत पेश था और ये जुगल गीत धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना और प्रवीण बाबी पर फिल्माया गया था। धर्मेंद्र जी को अपना खानदान, मतलब बीवी बच्चे होने के बावजूद उसने दोबारा शादी किया था अदाकारा हेमा मालिनी के साथ नेहतीन तख्तक में, और इन दोनों को दो बेटियां हुई, ऐशा और अहाना दियो। धर्मेंद्र कहा कि इस हकीकत पर खुद को खुशकिस्मत महसूस करते हैं क्योंकि वो अपने दोनों घरों को संभाल सकता था, दोनों खानदान को खुश रख सकता था। पर ये सब कब और कैसे शुरू हुआ? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली फिल्म थी फिल्म शराफत, फिर तुम हसी मैं जवान और नया जमाना। इन तीनों फिल्में ब्लॉकबस्टर फिल्म थे। आवाम इन फिल्मों को पसंद किया और ख़ास करके इन फिल्मों में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी। हेमा मालिनी ने कहा कि आवाम हम दोनों की जोड़ी फिल्मों में पसंद किया था। तीनों फिल्में सुपर हिट फिल्में थी, पर वो महसूस किया था कि ये ना सिर्फ फिल्मी की मोहब्बत थी बल्कि मोहब्बत की शुरुआत का एक हकीकत जोड़ा था। शुरू में मैं उसे सिर्फ पसंद करती थी और उससे मोहब्बत नहीं करती थी क्योंकि मैं जानती थी कि वो शादीशुदा है। हाँ, धर्मेंद्र को बे इंतहा मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उनकी पहली मुलाकात इससे कितने साल पहले हो चुकी थी। कब और कहाँ पहली बार मिले थे, एक गीत सुनवाती हूँ, फिर कहानी हम आगे बढ़ाएंगे।

तमाम शराफत में से ये गीत पेश था। ये धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की एक साथ पहली फिल्म थी, पर इन दोनों पहली बार कब और कहाँ मिले थे? मुझे अब्बास की फिल्म आसमान महल की प्रीमियर में शामिल होने की दावत मिला था। मैंने अपनी पहली फिल्म सपनों का सौदागर के लिए दस्तखत की थी। मेरे साथ थी मेरी मम्मी। सब मेहमानों के बीच खड़े थे शशि कपूर और धर्मेंद्र, और जब उन्होंने मुझे देखा तो पंजाबी में मुस्कुराते कहा, कुड़ी बड़ी चंगी है, ये हेमा मालिनी ने कहा था। फिर उन्हें उनके सामने राज कपूर की ड्रीम गर्ल के तौर पर तारीफ कराया गया। फिल्म सपनों का सौदागर, जिसमें राज कपूर के साथ काम किया था और अवाम उस फिल्म को पसंद किया। उसके बाद हमने कई और अदाकारों के साथ काम किया। हेमा जी ने कहा, मुझे धर्म जी के साथ काम करने की इंतज़ार रहता था, पर आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी हो गया, लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं किया। हेमा जी ने कहा कि नेखती फैफ सिर्फ तक हम दोनों एक साथ कई फिल्मों में काम किया। एक सैनिक के लिए धर्म जी कई बार रिटेक कराते थे, खास करके जब प्यार भरे सैनिक होते थे। धर्म जी हेमा के साथ शूटिंग पर आने के बहाने ढूंढते थे, तब भी जब उनकी ज़रूरत नहीं होती थी। अब हम आपको फिल्म नया ज़माना में से एक गीत सुनवाते हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ में, जो हेमा जी पर फिल्माया गया था। इसी फिल्म में थे हेमा के साथ धर्मेंद्र।

हेमा ने कहा कि इतनी सालों बाद वक्त के साथ साथ वो खुद धर्म जी की तरफ खींचती गई। वो जज्बा एहसास अंदर से महसूस कर रही थी और कहा हेमा ने, आखिरकार अपने मुस्तकबिल के शौहर का तसव्वुर बिल्कुल धर्मेंद्र जैसे ही किया था, बस फर्क ये था कि वो गैर शादीशुदा हो। लोग अब हेमा की और धर्मेंद्र के बारे में तरह तरह की बातें करते थे, अफवाहें थे। इसके वजह से घर में तनाव था, वो उलझन में थी और कहा हेमा ने, ये तो तकदीर और मेरा नसीब था। वो अपने वालदैन पर नाराज थी इसलिए क्योंकि माँ बाप एक मुनासिब खुशखिक्त लड़का तलाश करने की जुनून जो था। लड़का चाहे डॉक्टर हो, बिजनेसमैन या अदाकार, धर्मेंद्र ने अपने जिद पर कायम था। वो हेमा जी से शादी करना चाहा। हेमा ने कहा कि हम दोनों एक साथ कई फिल्में बनाए, यहाँ तक कि शूटिंग के दौरान हफ्तों महीने देश विदेश में साथ थे। और फिर ये एक आदत बन गई कि हम हर वक्त एक साथ रहते थे। घर में तनाव स्पानिंगन था और कहा कि फैसला जो वो अब लेंगे इससे माँ बाप खुश नहीं होंगे। फिर एक दिन हेमा ने धर्म जी को फ़ोन किया और कहा कि मुझसे अभी शादी कर लो। ये लफ्ज़ सुनने के लिए धर्म जी बेताब था। आखिरकार दोनों ने फैसला किया शादी करने को, पर अफवाहें थे कि दोनों ने शादी करने के लिए पहले इस्लाम मज़हब को कबूल किया था। लेकिन धर्म जी और हेमा ने हमेशा इस इल्ज़ाम को इनकार किया और कहा कि पार्लियामेंट की मेंबर्स की हैसियत से ये दोनों के खिलाफ एक सियासी चाल थी। इन दोनों की शादी अयंगर तौर तरीके से हुई थी। धर्म जी की तरफ से सिर्फ उनके वालिद था। शादी के मौके पर धर्म ने एक वेश्ती साउथ इंडियन रिवायती लिबास पहना हुआ था। पंडित प्रधान ने कहा कि तकरीब औकफेर अयंगर रिवायत के मुताबिक की गई थी और कहा पंडित प्रधान ने कि शादी का दिन त्वे मैं नेहन तख्तख में था। ये शादी इंतहाई निजी यानी प्रिफे मामला थी और ये शादी हेमा के भाई के घर में हुई थी। हेमा मालिनी की माँ जया चक्रवर्ती ने उनकी शादी में मौजूद नहीं थी। माँ बाप इस शादी के खिलाफ थे। कहा गया कि धर्म पहले ही अपनी पहली बीवी प्रकाश कौर से शादी कर चुकी थी और उसे कानूनी तौर पर तलाक नहीं दी थी, इसलिए उन्होंने हेमा जी के शादी को ऑफिशियल बनाने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया था। हेमा की माँ से जब सुनालिस्त सवाल किया कि क्यों वो शादी में शिरकत नहीं की, तो उसने कहा कि ये शादी तामिल की रीत और रिवाज की मुताबिक नहीं हुई थी और वो चाहती थी कि हेमा जितेंद्र से शादी करे। कहानी दिलचस्प है, पहले एक गीत सुनवाते हैं।

फिल्म रजिया सुल्तान में से ये नगमा पेश था। इस फिल्म में अहम किरदार में थे हेमा मालिनी और धर्मेंद्र। इस नगमा से पहले आपने सुना कि शूना लिस्टन जब हेमा की माँ से सवाल किए कि आप इस शादी के खिलाफ क्यों थी, तो माँ जया चक्रवर्ती ने कहा, कई वजह थी, धर्म जी शादीशुदा था, चार बच्चों का बाप और मेरी उम्र का था। मैगजीन वाले ने लिखे कि शादी के दिन धर्मेंद्र अपनी बीवी हेमा को दो हीरे की अंगूठी दिया था और उसके वालिद अपने नई नवेली बहू को एक साड़ी दी थी। हेमा ने तो यहाँ तक कहा कि मैंने बहुत पहले ही उसे जहनी तौर पर दिल और दिमाग से अपना जीवन साथी बना लिया था और ये रीत और रस्में सेरेमोनी सिर्फ हमारे परिवारों को खुशी करने के लिए थी। यहाँ तक के धर्म मुझे एक अयंगर मंगलसूत्र भी दिया था। कुछ सालों बाद हेमा जी अपने बेटियों ऐशा और अहाना के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि मैं कभी किसी दूसरे खानदान से मुकाबला नहीं करती थी और कहा हेमा ने, मैंने मोहब्बत की है, बदले में उनसे कुछ मांगा नहीं। धर्म अभी भी अपने पहली बीवी प्रकाश और बच्चों का ख्याल रखता है और वो हमेशा अपनी बेटियों ऐशा अहाना और मेरे लिए मौजूद रहते हैं। बच्चे जब अपने वालदैन के बारे में हकीकत जाना तो उन्हें एतराज़ नहीं हुआ। ऐशा दियोल अपनी किताब में लिखा कि अगर मेरी माँ ने एक अयंगर से शादी की होती तो आज वो सिर्फ एक घरेलू बीवी होती। हेमा ने कहा कि घर के कुछ कायदे कानून था, ऐशा और अहाना दोनों को शलवार कमीज पहननी थी और जीन्स पहनने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी, शॉर्ट्स या तंग लिबास भी मना था। धर्म जी कुछ बातों के बारे में संजीदा सीरियस था। वो एक क्लासिक पंजाबी बाप था लेकिन आज़ाद ख्याल हेमा की बदौलत धर्म जी

खुद बदलने लगा। उसने मेरी किसी क्लासिकल डांस में शिरकत नहीं थी। एक बार मेरे डांस देखने के बाद धर्म जी मुझसे कहा, आप बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आते हैं, जैसे आपका ताल्लुक मुझसे नहीं है। अब मैं तुम्हारी डांस परफॉर्मेंस मंच पर कभी भी नहीं देखेंगे। और कहा धर्म ने, बच्चों को डांस मत सिखाना। पर हेमा की जिद थी, वह अपनी बेटियों को क्लासिकल डांस सिखाई। लेकिन उन्हें देखने के बाद धर्म ने अपना इरादा बदल लिया। हेमा ने कहा कि ये उसका कसूर नहीं था कि उसने ऐसी सोच ऐसे ख्याल रखा था। फिर धर्म ने अपने बेटियों ऐशा और अहाना से कहा, मम्मी की जैसे करो डांस। डांस तो ठीक है, पर फिल्मों की तरफ एक्ट्रेस बनने का ख्याल, इसके बारे में सोचना ना कभी, इसके इजाज़त नहीं मिलेंगे। आगे क्या होता है, धर्मेंद्र अपने बेटियों को एक्ट्रेस बनने की इजाज़त देंगे या नहीं, अगले प्रोग्राम में बयां करेंगे। अब इस जुगल गीत के साथ इस हिस्से का प्रोग्राम फिल्मी दुनिया यहीं पर रोक देती हूँ।

आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने महान शख्स धर्मेंद्र साहब के बारे में बयां किया। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं ये ड्यूएट।

सदाबहार दो गाना पेश था मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ों में। मोहब्बत भरे अंदाज में लुत्फ उठाइए इस नगमा से।

महेंद्र कपूर की शहद भरी आवाज़ में पेश था ये नगमा। लोगों ने मुझे बताया कि वक्त बदल जाता है और वक्त ने मुझे बताया कि लोग भी बदल जाता है। ज़रूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी साथ रहेगा, इसीलिए अकेले चलना सीख लो। अगर वक्त अपना है तो सब अपने हैं, वरना कोई अपना नहीं।

कहानी किस्मत की दिल छू लेने वाली नगमा पेश था मुकेश की दर्द भरी आवाज में। अब आइए सुने अगला गीत।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। गीत जो अभी आपने सुना फिल्म अधूरी दुल्हन में से लिया है। आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की। संगीत सवारने वाले थे संगीतकार त्रिवेणी भवन। इतना दर्द ना दिया कर ऐ जिंदगी, हर किसी के पास हमदर्द नहीं होता। बहुत थे हमारे भी दुनिया में अपने, मिल ना सका दिल को अगर प्यार तुम्हारा, तो आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा।

दिल छू लेने वाले नगमा पेश था, शायर इन दीवार का कलाम था, आवाज मुकेश जी की। पल पल पल पल तरसे उस पल के लिए, पल आया भी तो कुछ पल के लिए। सोचा था उसे जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बना लेंगे, पर वो पल भी रुका तो बस एक पल के लिए।

जी हाँ, ये पल भी खूबसूरत है ना, क्योंकि क्योंकि आप उजाला रेडियो के जरिए ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और लुत्फ उठा रहे हैं, इतना यकीन है मुझे। इसी अंदाज में सुनवाते हैं ये नगमा, आवाज़ें हैं सुमन कल्याणपुर और मीनू पुरुषोत्तम की।

उमंग भरा गीत पेश था रोशन की सजाया संगीत बोल था साहिर लुधियानवी का। कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो सुनाने को जा रही है स्वर की मालिका लता मंगेशकर ने।

फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का नगमा पेश था। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम से लुत्फ उठा रहे हैं। इस खूबसूरत नगमा के बाद मैं क्या सुनाऊं? हाँ, तो लीजिए मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में ये नगमा।

ये नगमा कलाम शकील बदायूनी का और मौसिकार रवि की मौसिकी थी। फासले फासले तो दिलों को हुआ करते हैं, दूरी के नहीं, जाने वाले तो तस्वीर में भी मिल लेते हैं।

जमीन आसमान ही मिलते, राहुल देव बर्मन का संगीत रचना और अनजान का गीत रचना था। मन्ना डे से सुनवाते हैं ये नगमा, दर्श है तुम्हें प्यार करूं हरदम।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये नगमा मन्ना डे की आवाज़ में। मुकेश जी और लता मंगेशकर से पेश है ये दो गाना।

प्यार का नगमा है। एवरग्रीन सॉन्ग पेश था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, संगीत था और आनंद संतोषी का लिखा तर्ज। धोखा खाने वाले को तो वक्त के साथ साथ सुकून मिल जाता है, लेकिन लेकिन धोखा देने वाले का कभी सुकून नहीं मिलता। और ये प्रोग्राम का आखिरी नगमा है।

और इस नगमा के साथ आज का प्रोग्राम सबरंग हम खत्म करते हैं। प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी सुनने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार। खादिमाती निशा।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार मुरली, बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे है कि बीते हुए बीफे को 80 साल के आयु में तख्त ख्यार और श्रीमान परस मुरली और बाकी दो स्वर्गीय भाइयों, चार बहनों और चार स्वर्गीय बहनों के बहन, दो भाऊजी के ननद और सभी लड़कन के फुआ और मौसी, देनहाग की रहने वाली श्रीमती सबित्री मुरली की मृत्यु देनहाग में हो गई है। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार मुरली, बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे है कि बीते हुए बीफे को 80 साल के आयु में तख्त ख्यार औत श्रीमान परस मुरली और बाकी दो स्वर्गीय भाइयों, चार बहनों और चार स्वर्गीय बहनों के बहन, दो भौजी के ननद और सभी लड़कन के फुआ और मौसी, देनहाग की रहने वाली श्रीमती सबित्री मुरली की मृत्यु देनहाग में हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बीफे के दिन में 2 बजे दोंदर दखांस्तांद ओम 2 uur किए जाएंगे। क्रीमेटोरियम ओकनबर्ग, ओकनबर्ग स्ट्रैट 2121 देनहाग में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर उत्फार्थ फ्रजोर्खिंग, समस्त परिवार मुरली और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

0: और उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी आप मृत्यु समाचार को सुने।
1: यू आर
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey Sunwalo, मैं हूं आमी जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वो ही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।

अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नार info@ujala.net info@ujala.net

क्लास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

याद रहेगा, हाँ याद रहेगा, प्यार का ये रंगीन जमाना याद रहेगा। फिल्म उमर कैद और गीत के गाने वाले लता जी एंड मुकेश जी। उजाला रेडियो है ये।

जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा, कुमार सानू की आवाज। और अब मोहम्मद रफी साहब हिस्सा लेंगे शारदा के साथ में फिल्म गुमनाम का गीत।

आई बहारों की शाम मोहम्मद रफी साहब की आवाज और फिल्म वापस से गीत आप सुने इट्स यू आर उज्जाला रेडियो।

सारा जमाना हसीनों का दीवाना। इसके बाद अब आप एक गीत सुनेंगे लता जी की आवाज में, फिल्म का नाम मेरे हमदम मेरे दोस्त।

अल्लाह, ये अदा कैसी है इन हसीनों में, लता जी की आवाज में। आप सुने फिल्म का नाम मेरे हमदम मेरे दोस्त। En u luistert naar de leukste en gezelligste radio, Ojala Radio.

फेफी कॉल से, जो मैं लेकर मैं सीता बीफर कभी ना निकली, या तो ममता शर्मा एंड वाजीत से आप इस गीत को सुनें।

प्यार हुआ इक्वल राड हुआ और फिर भी क्यों डरता है दिल। लता जी के साथ मन्ना दी से आप सुने गीत, फिल्म का नाम श्री 420। और सुनने वालों, अभी हमने कहा कि ये आखिरी गीत होंगे आज का प्रोग्राम में, लेकिन अभी कुछ समय और बाकी है तो एक गीत और सुना देता हूँ।

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो अब उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो अब उजाला रेडियो.

और एक मंजिल राही दो, बोलो फिर प्यार न कैसे हो। फिल्म संजोग लता एंड मुकेश जी, उजाला रेडियो है ये।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न

हजार बार देखो ना ना हजार बार देखो, क्योंकि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा मोहम्मद रफी साहब की आवाज और फिल्म का नाम चाइना टाउन उजाला रेडियो पर।

तुमसे मिलके, हाँ तुमसे मिलके, फिल्म परिंदा के गीत और गीत के गाने वाले आशा जी एंड सुरेश वड़कर, और ये उजाला रेडियो है। और सुनने वालों, इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए वेबसाइट आप देखें जरूर, उजाला.nl। अब लता जी हिस्सा ले रही है। पुरानी फिल्म अमन से निकाला हुआ गीत।

0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

ये उजाला रेडियो है, सुनने वालों इसी के साथ आरंभ किया जा रहा है एक और प्रोग्राम जिसका नाम दर्द दिल। प्रोग्राम दर्द दिल दर्द भरी गीतों के साथ, उन गीतों आप सुनते हैं इस प्रोग्राम में जिन गीतों को सुन करके कभी तो दिल को सुकून मिलता है और कभी कभी दिल का दर्द और बढ़ जाता है। कैसा भी हो, प्रोग्राम आप ही के लिए हम बना रहे हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप सुनेंगे और सुन करके पसंद भी करेंगे। तो चलिए आज का इस प्रोग्राम में पहला गीत जो है तो सुनेंगे आप मुकेश जी की आवाज़ में।

क्या किया रे दुनिया वाले की जहाँ के गम सभी गम तूने मुझे दे डाले। मुकेश जी की आवाज़ में गीत को आप सुने। फिल्म बेटी से निकाला हुआ, फिल्म बेटी 1969 नेखन जस्तक की फिल्म और म्यूजिक कंपोजर सोनी कोमी। इस फिल्म में उन दिनों काम किए संजय खान के साथ नंदा जी।

0: ना आया लता जी की आवाज। फिल्म मेरे हम सफ़र 1970 में बनाई गई नेहंतिन ज़ीफ़न तख में और संगीत से सजाए कल्याण जी आनंद जी। इस फिल्म में काम किए उन दिनों शर्मिला टैगोर के साथ जितेंद्र और बलराज सानी। ये उजाला रेडियो है, प्रोग्राम का नाम है दर्द-ए-दिल।
1: See you.

दुश्मन तो मेरी दोस्ती को तरसे, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। गीत को आप सुने, फिल्म का नाम आए दिन बहार के, 1966 नई खुनतिन जसन जस्तक के फिल्म में संगीत से सजाइए लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल इस गीत को। और इस फिल्म में काम किए धर्मेंद्र के साथ आशा पारेख और बलराज सानी।

0: की बस कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी ना भूलना।

0: अभी तो झूठा कह रही हो। बेशर्म शेखर,
1: मेरे पास वक्त नहीं है बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
2: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
1: होता है तो होने दो।

दिल मुकेश जी की आवाज में आप सुने 1959 1959 की फिल्म छोटी बहन से निकाला हुआ और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीत से सजाइए इस फिल्म में काम किए उन दिनों बलराज सानी और नंदा जी। उजाला रेडियो है ये, दर्द भरी गीतों के साथ दर्द भरी प्रोग्राम दर्द दिल आप सुन रहे हैं।

हम बेवफा ओ सनम, लता जी के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब से। गीत को आप सुने, फिल्म का नाम बेदर्द ज़माना क्या जाने, बेदर्द ज़माना क्या जाने 1959 की फिल्म, नीखन फाइव तक की फिल्म, और काम किए अशोक कुमार और नीरूपा रॉय, और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी।

मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं प्रेम में सब कुछ हार गई। गीता सुने गीता दत्त की आवाज में। 1947 निखंतिन जीफनन फिरतख की फिल्म दो भाई में और संगीत से सजाइए इस गीत को सचिन देव बर्मन। और इस फिल्म में काम किए उन दिनों कामिनी कौशल और विक्रम कपूर। उजाला रेडियो है ये, प्रोग्राम का नाम दर्द-ए-दिल।

नैन बिना मेरी दुनिया अंधेरी, जाऊं कहां। मुकेश जी की आवाज 1934 के फिल्म अमृत मंथन से निकाला हुआ गीत, बहुत ही पुराना गीत, पुरानी फिल्म से निकाला हुआ आज का प्रोग्राम दर्दे दिल में। दर्दे दिल प्रोग्राम दर्द भरी गीतों के साथ बनाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई दिल नहीं है जिसमें कोई दाग नहीं, ऐसा कोई दिल नहीं है जिसमें कोई चोट नहीं, ऐसा कोई दिल नहीं है जिसमें कोई घाव नहीं, ऐसा कोई दिल नहीं है जिसमें कोई दर्द नहीं। इसलिए इस प्रोग्राम का नाम रखे गए गीत, बहुत ही पुराना गीत, पुरानी फिल्म से निकाला हुआ आज का प्रोग्राम दर्दे दिल में। दर्दे दिल प्रोग्राम दर्द भरी गीतों के साथ बनाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई दिल नहीं है जिसमें कोई दाग नहीं, ऐसा कोई दिल नहीं है जिसमें कोई चोट नहीं, ऐसा

अगर हो सके मुझे भूल जाना, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, फिल्म तकदीर का गीत, 1967 नईखंतिन जीफन जस्त की फिल्म तकदीर, और संगीत से सजाइए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और इस फिल्म में काम किए उन दिनों भारत भूषण के साथ कमल कपूर और फरीदा जलाल जी।

है दिल कहाँ तेरी मंजिल बता, लता जी की आवाज में। आप सुने 1961 निखंतिन एनन जस्तर के फिल्म माया से निकाला हुआ गीत, सलील चौधरी संगीत से सजाए। और इस फिल्म में काम किए देव आनंद के साथ में माला सिन्हा और ललिता पावड़ जी। उजाला रेडियो है ये।

जब गमे दिल सताता है, जब गमे इश्क सताता है तो हंस लेता हूँ, जब गमे इश्क सताता है तो हंस लेता हूँ। मुकेश जी की आवाज़ और 1963 नेखंतिन द्रियन जस्तह के फिल्म से निकाला हुआ, फिल्म का नाम किनारे किनारे, हाँ किनारे किनारे, जय देव म्यूजिक कंपोजर। और इस फिल्म में काम किए मीना कुमारी के साथ चेतन आनंद और देव आनंद।

दिए जलते हैं और फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से लेकिन दुनिया में दोस्त मिलते हैं। किशोर कुमार की आवाज में गीत को आप सुने, फिल्म नमक हराम से निकाला हुआ 1973 निखंतिंद्रियन जीवन तक की फिल्म नमक हराम। म्यूजिक से सजाए, संगीत से सजाए राहुल देव बर्मन, और इस फिल्म में काम किए राजेश खन्ना के साथ अमिताभ बच्चन और रेखा जी। उजाला रेडियो का प्रोग्राम दर्द दिल है ये। आज का इस प्रोग्राम दर्द दिल में एक आखिरी गीत पेश है।

ये रात खुश नसीब है, लता जी की आवाज में। आप इस गीत को सुने फिल्म आईना से निकाला हुआ। काम की इस फिल्म में जैकी श्रॉफ के साथ जूही चावला और अमृता सिंह। इसी के साथ समाप्त किया जा रहा है आज का प्रोग्राम दर्द दिल, इसी उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आए हुए होंगे।

0: एक चीज के लिए एक आदमी अमूल्य हो जाते हैं, जिसकी मोल नहीं, तोल मोल नहीं होती, और ये चीज हमेशा खुदा के घर से आता है। वो चीज थी मुकेश की आवाज की टिम्बर, जिसका वो धनी था। वो टिम्बर किसी की आवाज में मुझे और सुनाई नहीं दी।
1: भाई और बहनों, ये है मेरी जिंदगी का पहला गाना।

0: में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखें